हर हर हर उतारियो जन नानक नाम समाया। माली गौड़ा महला चौथा जप मन राम नाम सुखदाता। सतसंगत मिल हर साध आया गुरमुख ब्रह्म पछाता रहा।

0: सुख है।
1: गुर सेवा सदा सुख है, जिसनो हुक्म मनाए। सोयना रूपा सब तात है, माटी रल जाई। बिन नावै नाल न चल्ली।

है दूजै भरम भुलाई है गुरमुख जाग रहे दिन राती साचे की लेव गुरमत जाती।

सुख दुख ही ते अमर अतीता गुरमुख निज कर पाएंदा श्याम वेद रिग जुजुर अथर्वण।

गुर बिन मुख मुक्त क्यों पाई, बिन गुर राम नाम क्यों त्याई। गुरमत ले हो तरहो पवद उत्तर, मुक्त पय सुख पाया। गुरमत कृष्ण गोवर्धन थारे, गुरमत सायर पाहन तारे। गुरमत लेहो परम पद पाई, नानक गुर परम चुकाया। गुरमत ले

देखै, अहनिस ज्योत निरंतर पेखै, आनंद रूप अनूप स्वरूपा गुर पूरै देखाया। सतगुर मिलहो।

भगत हेत गुर शब्द तरंगा, हर जस नाम पदार्थ मंगा। हर पावै गुर मेल मिलाए, हर तारे जगत सबाया। जिन जप जप

यो भव जल जगत शब्द गुर तरिया अंतर की दुविधा अंतर जरिया पंच बाण ले जम कौ मार गगनंतर तनख चढ़ाया साकत नर शब्द सुरत क्यों पाई है शब्द सुर

पूर्क मन हाथी। पाखंड धर्म प्रीत नहीं हर स्यों, पाखंड धर्म प्रीत नहीं हर सों। गुर शब्द महारस पाया, कुदरत देख रहे मन मानिया, गुर शब्द ही

ना गुरमुख होवै सो सच कमावै साची करनी सारी हे कार कमाई जो मेरे प्रभ पाई हो मैं तृष्णा शब्द बुझाई गुरमत सद ही अंतर शीतल हो मैं मार निवारी हे सच लगे।

गुर शब्द पछाता। गुरमुख मरै ना जन्मै गुरमुख, गुरमुख मरै ना जन्मै गुरमुख, गुरमुख शब्द समाहा है गुरमुख ना।

सहजे गुण रहै दिन राती, ज्योति ज्योत मिलाया। काया बिरख पंखी विच वासा, अमृत जुग है गुर शब्द निवासा। उठ है न मूले न आव है न जाही, निज घर वासा पाया। काया सुध है शब्द विचार है।

हे। मन प्रतीत बनी प्रभ तेरी, बिनस गई हों मैं मत मेरी, अंगीकार किया प्रभ अपने जग में।

अमोघ दर्शन आजूनी संभव, अकाल मूर्त जिस कदे नाही खाओ। अविनाशी अवगत अगोचर, अविनाशी अवगत अगोचर, सब सब किछ तुझ ही है लगा। श्री रंग बैकुंठ के वासी, मछकछ कूर्म।

साख खरा शराशरयत ले कम्मा वह त्रिकत तर्क खोज टोला वह मारफत मन मार हो अबदाला मिलो हकीकत जित फिर ना मरा कुरान कतेब दिल माहे कमाही दस औरात रखो बदराही पंच मर्द।

गर्भ अग्न मह जिन्हें उबारिया रतत किरम मह नहीं संघारिया अपना सिमरन दे प्रतपालिया ओ सगल घटा का मालका चरण कमल शरण आई आया साध संग है हर जस का।

हर अगम अगाधा निःचल नाम निदान है जिस सिमरत हर लाधा निःचल कीर्तन गुण गोविंद गुरमुख गावाधा।

बिन कबहु न छूटस बिरथा जन्म भयो रहाओ। तन मह काम क्रोध हौ ममता कठिन पीर अत भारी। गुरमुख राम जपहो रस रसना इन विद तार तू तारी। बहरे करन अकल पई होची शब्द सहज नहीं बूझया। जन्म पदार्थ मन मुख हारिया

बुझाए। संडा मरका सब जाए पुकारे, प्रहलाद आप बिगड़िया, प्रहलाद आप बिगड़िया, सब चाटड़े बिगाड़े। दुष्ट सभा में मंत्र पकाया, प्रहलाद का राखा हुए रघुराया। हाथ खड़े

जाने। दैत पुत्र प्रहलाद गायत्री तर्पण किसु ना जाने, शब्दे मेल मिलाया रहाऊ। आन दिन भगत करह दिन राती, दुविधा शब्दे खोई, सदा निर्मल है जो सच राते सच।

68 सुरसरी। हम मूर्ख कौ हर कृपा करी, जन नानक तारियो तारण हरी। पैरों महला चौथा। सोकृत करनी सार जप माली, हृदय फेर चले तुध नाली। हर हर नाम जप हो बनवाली, कर कृपा मिल हो सतसंगत। टूट गई माया जम जाली, रहाओ गुरमुख सेवा काल जिन काली। तिस घड़ी है शब्द सच्ची टकसाली। हर अगम अगोचर गुर अगम दिखाली, विच काया नगर लद्धा हर पाली।

सतसंगत साई हर तेरी, जित हर कीर्त हर सुनने, जिन हर नाम सुनया मन पीना, तिन हम श्रे वह नित चरणे, जग जीवन हर त्याए तरणे, अनेक असंख नाम हर तेरे, ना जाही जिहवा इत गणने रहाओ। गुरसिख हर बोलहो हर गावो, ले गुरमत हर जपने, जो उपदेश सुने गुर के रा, सो जन पावे हर सुख घणे।

रहाओ। काल युग में है एक नाम उदार, नानक बोले ब्रह्म विचार। पैरों महला पंजवा, सतगुरु सेव सर्ब फल पा।

ठाकुर छोड़ दासी कौ सिमरहै मनमुख अंध अज्ञाना हर की भगत करहै तिन निंदा है निगुरे पशु समाना जियो पिंड तन धन सब प्रभ का साकत कहते मेरा अहम बुद्ध दुर्मत है मैली बिन गुर भवजल।

अंतर वस्त दिसंतर जाए, बाज गुरु है परम पुलाए। जिस मस्तक कर्म लिखिया ललाट, जिस मस्तक

मस्तक भाग, जिस मस्तक भाग सो लागा सेव रहाओ। सतगुर मेरा सर्ब प्रतपालै, सतगुर मेरा मार जीवालै।

ओडा कूप गोज खिन काढ़ै, ज्यो ओडा कूप गोज खिन काढ़ै त्यो सतगुर वस्त लहाइयै। जिने ऐसा सतगुर साध ना पाया ते त्रिग त्रिग नर जीवाइयै। जन्म पदार्थ पुन

खसम त्याया साध संगत प्रभ कियो निवास हर जप जप होई पूर्ण आस जल थल महियल रब रहया गुरमिल नानक हर हर कहया अष्ट सिद्ध नव निद ए कर्म प्राप्त जिस नाम दे प्रभ जप जप जीव है तेरे दास गुरमिल नानक कमल प्रगास बसंत महला पंजवा घर पहला एक तुके एक ओंकार सतगुर प्रसाद सगल

हजूर काम क्रोध तृष्णा गई प्रभ काम क्रोध तृष्णा गई नानक प्रभ कृपा पई। बसंत महला पंजवा रोग मिटाए प्रभु आप बालक राखे अपने करथाप शांत सहज

कुबजा उधरी अंगुष्ट तार बिदर उधार्यो दास्त पहाए रे मन तू पी हर त्याए।

सहज अवल तूड़मणि गाडी चालती पीछे तिनका लेकर हांकती। जैसे पनकत थ्रू टिट हांकती सर धोवन चाली लाडली रहाओ तो भी तो वह बिरह बिराता

घूमऊ तिस अर्पऊ सब सुख जाई। एक निमुख प्रदर्श दिखावे तिस संतन कै बल जाई। करो निहोरा बहुत बेनती सेवों दिन रह नाई। मान अभिमान हों सगल त्यागों जो प्रै बात सुनाई। देख चरित्र पई हों बिस्मन गुर सत गुर पुरख मिलाई।

आद सनकादिक ब्रह्मादिक गावत गावत सुख प्रहलाद पीवत अमयो मनोहर हर रस जप नान।

पंजवा तांते करन पलाह करे महाविकार मोह मद माताओ सिमरत नाहे हरे रहाओ साध संग जपते नारायण तिनके दोख जरे सफल देह धन ओए जन्मे।

अगम अगोचर अनाथ अजोनी गुरमत एको जानिया सुपार परे नाही चित डोले मन ही ते मन मानिया।

तीर्थ अड़सठ मज्जन नाई सत्संगत की तूर परी उड नेत्री सत्संगत की तूर परी उड नेत्री सब दुर्मत मैल गवाई रहाओ जाहर नवी

हाट बिहाजे जिस हर हर कृपा करै हर जन को मिलिया सुख पाइए सब दुर्मत मैल हरै हर जन को हर भूख लगानी जन तृप्त है जा हर गुण बिचरै हर का जन हर जल का मीना हर बिसरत फूट मरै जिन ए प्रीत लाई सो जाने कह जाने जिस मन धरै

सुरपत कर दोख जठर कौ परते कृपा निध छोड़ आन कौ पूजह आत्म काती हरते हर बिसरत ते दुख दुख मरते अनकबार ब्रह्म है बहुजोनी टेक न काहूं धरते रहाओ त्याग स्वामी आन कौ चितवत मूड मुग्ध खल।

कहो नानक मेरो बनयो सुहागो पत शोभा भले अचारे। मलार महला पंजवा। प्रीतम साचा नाम त्याए

कान हर बरस सगल जग छाया, भय कृपाल प्रीतम प्रभ मेरे, आनंद मंगल सुख पाया रहा, मिटे क्लेश तृष्ण सब बूझी।

ब्रह्म कमल पुत मीन ब्यासा तप तापन पूज करावे गो। जो जो भगत होए सो पूजहो परमन परम चुकावे गो। जात न जात देख मत परम हो सुख जन।

अनंत, हर अगम अगोचर अगम हर, हर मिलिया आए अचिंत, हर आपे घट घट वर्तदा, हर आपे आप बेअंत, हर आपे सब

महंस बला नित उठ उठ जूझ मिक्री जय। काम क्रोध नगर महंस बला नित उठ उठ जूझ करी जय। अंगीकार करहो रख ले वहो गुर पूरा काढ़ कढ़ी जय। अंतर अगन सवाल अत बिखिया।

अर्थ कह साध संग स्नेह सत्यं सुख्यं बसंत नान कह मिथ्यंत देहं खीणंत बलनं बरदंत जरुआ।

उरतहारं कुल है समूह सगल उदहारं बड भागी नानक को तारं सिमरणं गोविंद नामं उदरणं कुल समूह नहें।

ਕਾਲ ਸਗਲ ਸੁਖ ਰਾਸ ਹਰ ਹਰ ਹਾਂ ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਨਵ ਨਿਧ ਬਸ ਹੈ ਜਿਸ ਸਦਾ ਕਰ।

मनोरथ कोए ना पूरे चाले ऊठ निराश। कबीर हर का सिमरन जो करे सो सुखिया संसार, इत उत कत है न।

ਪਰੈ ਹਿਤੈ ਪਰੈ ਅਪਰ ਅਪਾਰ ਪਰ ਆਪਣੋ ਪਾਵਨ ਕਰ ਮੰਤਰ ਨਾ ਦੂਸਰੋ ਧਰ ਓਪਤ ਪਰਲਾ।

ਸਤ ਸਤ ਹਰ ਸਤ ਸਤ ਸੱਤੇ ਸਤ ਪਣੀਐ ਦੂਸਰੇ ਆਨ ਨਾ ਅਵਰ ਪੁਰਖ ਪਉ ਰਾਤਨ ਸੁਣੀਐ।

धर्म है। सब कल उधरे एक नाम धर्म, प्रगट सगल हर पवन में है। जन नानक गुर पार ब्रह्म सवैये।

मुन जन गाव है अचल छला। गाव है गुण तोम अटल मंडल वै, भगत पाए रस जाने ओ, कब कल सुजा।

जिन हुक्म सब सृष्ट सवारी। ब्रह्मांड खंड पूर्ण ब्रह्म गुण निर्गुण सम जाने जप

ਗੁਰ ਅਮਰ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਸਤ ਕਲਯੁਗ ਰਾਖੀ ਪਤ ਅਗਨ ਦੇਖਤ ਗਤ ਚਰਨ ਕਵਲ ਜਾਸ ਸਭ।

शब्द गुर श्रवण है सुनियो, बिखते अमृत होयो नाम सतगुर मुख पण्यो, लोहो होयो लाल नदर सतगुर जद।

पुन दुखन नास सुखदायक सूरौ जो धरत ध्यान बस तेह नेरे पूरौ पुरख हृदय हर सिमरत मुख देखत अग जाहे परेरे जो हर बुद्ध रिद सिद्ध चाहत गुरु गुरु गुर कर मन मेरे।

पायो नहीं अंत सुरे असुर है नर, गण गंधर्व खोजंत फिरे, अविनाशी अचल अजूनी संभव।